0: जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
1: Laika Radio easing you through the night with London's biggest hits

0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Aslam live in the UK.
4: The O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: is Leica Radio.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए मोमिन की दुआ

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाए सो पातशाह साहिब नानक रहन जाए।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग।

0: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
1: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
0: जिंदगी वहां सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर इनटू अ चांस टू विन व्हाइल मेकिंग योर मनी गो इवन फर्दर विद एसबीआई यूके
3: ट्रांसफर 1000 पाउंड और मोर इन अ डे टू एंटर आवर डेली ड्रॉ फॉर अ 75 पाउंड वाउचर
2: ट्रांसफर 2000 पाउंड और मोर इन अ वीक टू एंटर आवर वीकली ड्रॉ फॉर अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन
3: ट्रांसफर नाउ यूजिंग द योनो एसबीआई यूके ऐप ऑनलाइन बैंकिंग और सिंपली विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच
2: एंड दैट्स नॉट ऑल एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस एंड कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स
3: मोर वैल्यू मोर रिवॉर्ड्स मोर reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Kitty party ho ya business meeting ya koi khas celebration ab har event banega stylish at Vivek House Godfather and Co swadish khana 5 course lunch sirf £35 zabardast ambience aur convenient car parking available at Holiday Inn Watford to der kis baat ki booking ke liye whatsapp kare 073-00-99-8823
5: हिमालय कारपेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है 500 से ज्यादा कारपेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस हिमालय कारपेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट
6: himalayacarpets.com
7: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
8: न तेरे वर्गा आशिक वेखिया न तेरे वर्गी आशिकी
9: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song. Starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar. Directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul-Azha, May 27th.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Wake up. Feel good. It's Donny Brasco on Breakfast.
13: Like a radio.
14: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: चली।
1: Oh, it's probably why I'm so tired this morning.
2: चुरा के दिल मेरा कहाँ तू चली
1: मैं शॉपिंग चली
2: मुझे क्या पता कहाँ तू चली
1: I told you, I sent you my location.

0: की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: हल्के फुल्के moments को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
5: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
4: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
7: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
8: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
9: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस। एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।
13: दिस इज लाइका रेडियो। गो ऑनलाइन, लिसन एंड लिसन बैक लाइका।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं हो

0: Cornwall to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
1: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574 8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Reload with Fish but Nugger.
5: Leica Radio, London.
4: This is Leica Radio.

0: 2026 is coming to the Valley Charlton Athletic, featuring your Indian national football team. On Tuesday, May the 26th, Nigeria face Zimbabwe, then Jamaica's Reggae Boys clash with India's Blue Tigers, with Punjabi MC bringing the fire. Saturday the 30th of May, the huge final with live Afrobeat, reggae and Bollywood stars. Get tickets now at unitycup.com. Use the code LAIKA15 for 15% off. Exclusive radio partners, LAIKA Radio.
1: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है। 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड, तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ, वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस। हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन। साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट हिमालयकार्पेट्स.com।
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
5: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
6: फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स चांद मेरा दिल। वॉच अनन्या पांडे एंड लक्ष्य इन चांद मेरा दिल, कमिंग टू सिनेमाज ऑन मे 22nd।
7: चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल।
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 02071320700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
12: विश्वनागर सुपर से ऊपर।

0: Sunday, the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
0: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: बजट टाइट पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: This is Leica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
7: Simzy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.